की तरह मेरा भी एक सुंदर साजन था। उसकी आंखों में नशा, बाजू में ताकत और दिल में हिम्मत थी। बिजली की तरह नाचता हुआ मेरे पास आता था, गाता था, नाचता था।

0: त्रिभुवन बोलो
1: चारु चंद्र की चंचल चितवन
0: शाबाश आगे आगे
1: बिन बदरावर से सावन
0: शाबाश चलो आगे आगे आगे बढ़ो
1: चारु चंद्र की चंचल चितवन बिन बदरावर से सावन
0: फिर से चलो
1: चारु चंद्र की चंचल चितवन बिन बदरावर से सावन
0: शाबाश आगे आगे आगे
2: Yes, ma'am. Gonna take time out to say much respect to the Father, because without him, yes, we couldn't have made it here tonight. Barris.

0: तुम्हें कैसे बताऊं कि पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। कुछ ही दिनों के लिए जा रही हूँ, बारिश खत्म होने से पहले वापस आ जाऊंगी।
1: प्रॉमिस?

रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

0: तुम्हें कैसे बताऊं कि पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। कुछ ही दिनों के लिए जा रही हूँ, बारिश खत्म होने से पहले वापस आ जाऊंगी।
1: प्रॉमिस?

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: Amore mio, dove sai tu? Hey, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

पंचम से एक परिचय वो था जिसे मैं 30 साल जिया और भरपूर जिया हूं पूरी सरगम के साथ। संगीत के तो सिर्फ 7 ही सुर हैं मगर पंचम की शख्सियत में बेपनाह सुर थे और सारे के सारे हमने एक साथ जिए। अब ये एक और परिचय है उसकी चुप का जो तभी बीतेगा